द्वार दीपक शब्द विगासिया राम नाम और हार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी सच प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर का हेत प्यार निस अंधारी सुतिये

0: झूठ बोलना क्यों कर सुचा होए बिन आब शब्द नामा जिए साचे ते सच होए मुंदे गुणहीणी सुख के हे फिर रलिया रस मानसी
1: के हे थोड़ी जी सिहारी लाउणी जे के हे कमांगे फिर हाहे नू ला लग जानी के हे
0: मुंदे गुणहीणी सुख के हे फिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख नेह रहाओ फिर परदेसी जे थी है धन वांडी झूरे ज्यो जल थोड़े मछली करण पलाव करे फिर भावे सुख पाईए जा आपे नदर करे फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सोहै मन मोहया रती रंग निहाल शब्द सवारी सोहणी फिर रावे गुण नाल कामन कामना आवई खोटी अवगण यार ना सुख पीए साहुरै झूठ जली बेकार आवन मंजन डाखड़ो छोटी कंत विसार पिरकी नार सुहावनी मुत्ती सो कित साध पिरकै काम न आवई बोले फादल बाद दार कर ढोई ना लहै छूटी दूजै साध पंडित वाचह पोथिया ना बूचह विचार अनको मत्ती दे चल है माया का वापार कथनी झूठी जग पवै कहनी शब्द सोसार रहनी वाहिगुरु जी कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सोसार केते पंडित जोत की वेदा करह विचार बार विरोध बाद विरोध सलाहने वादे आवण जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख वखाण सब गुणवंती आखी है मैं गुण ना ही कोए हर वर नार सुहावणी मैं भावै प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा ना बेछोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास उन दान चंगे आईया बिन ना बिन साचे क्या तास जे हा राधे ते हा लुणै बिन गुण जन्म बिनास मुंदे गुणदासी सुख होए अवगण त्याग समाइए गुरमत पूरा होए
1: रहा ए पाठ आया है ना अवगण कई थामां ते अवगण पाठ भी आउंदा है सो इस करके ए खास करके ख्याल रखना है कई बारी अवगण दी थां ते जिस तरह असीं रोज ही पाठ करदे हां हम अवगण भरे एक गुण नाहीं ओ पाठ अवगण है कई बारी अवगुण असीं आम ही पाठ उत्थे सुणदे हां सो इस करके कई थावां ते ए पाठ अवगण आवेगा कई थावां ते अवगण आवेगा सो जिवें लिखिया है उसे तरह ही पूरे ख्याल ध्यान दे नाल इहदा उचारण करना है अवगण ते अवगण नूं मिक्स नहीं करना हांजी

0: आसा बंद चलाई है मोहे मोह मोह आसा बंद चलाई है मोहे मोह चोटा खाए
1: आसा बंद चलाई मोह मोह चोटा खाए जदों तुसी जड़ी मोहे वाला पहला जड़ा उथे मोह हाहे नू लान लगी उन थोड़ा लंबा कर लो जड़ा दूजा उन मोह यो पाठ कर लेना फिर मैं एक बारी कर दिना पाठ आसा बंद चलाई है मोहे मोहे चोटा खाए यो पाठ कर लेना हाँ जी
0: आसा बंद चलाई है मोहे मोहे चोटा खाए आसा बंद चलाई है।

0: अवर के करी विचार। शब्द सुरत सुख उपजै प्रभ रातो सुख सार। जो भावे त्यो राख तू मैं हर नाम आधार। मन रे साची खसमर जाए जिन तन मन साज सी गारिया। तिस से ती लिवलाए रहाओ तन बैसंतर होमी है। एक रत्ती तोल कटाए तान मन समदा जे करी अंदिन अगन चलाए। हर नाम
1: में तो पाठ करना है जी।
2: नहीं समदा ही ठीक है। समदा
0: तन मन समदा जे करी अंतिन अगन जलाए।
2: लकड़ा बालन जिनू आपां कहने
0: हर नामे तुल न पुजई। जे लख कोटी कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाइए सिर कर बत तराए। तन है मंचल गालिए भी तन ते रोग न जाए।
2: पाठ आया सिर कर बत तराए ए भी बाबे नु अधिक सहत ही उच्चारण करना। कर बत नहीं करना कर बत सिर कर बत तराए।
0: अर्ध शरीर कटाइए सिर कर बत तराए। तन है मंचल गालिए भी तन ते रोग न जाए।
1: हां जी ये करवत जेड़ा है ना ये आरे नु कहंदे ने ताकि थोड़े याद रह जावे। मैं ता कहण लगे आरा जेड़ा लकड़ चीरन वाला हुंदा जो हत्थां नाल चीरदे सी जिस तरह ते काशी शहर दे अंदर पहला रवायत रही है भी आरे नाल मनुख अपने आप नु चरवा लैंदे थे भी शायद इत्थे मुक्ति हो जाणी है काशी दे विच। इस करके तुहाडे याद रह जावेगा भी करवत हुंदा की है। हां जी
0: तन है मन चल गालिए भी मन ते रोग न जाए। हर नामे तुल न पुजई सब डिठी ठोक बजाए। कंचन के कोट दात करी बहु है वर गै वरदान। भूम दान गऊआ कणी भी अंतर गर्भ गुमान।
3: गऊआ दोने दुलिंकड़ ला की गऊआ इदा पाठ कर।
0: भूम दान गऊआ कणी भी अंतर गर्भ गुमान। राम नाम मन बेदिया गुर दिया सच दान।

0: सबको ऊपर सच आचार, सबको ऊंचा आखी है, नीच ना दिसै कोय, एक ने भांडे साजे है, एक चानन तिहो लोए, कर्म मिलै सच पाई है, धुर बख्श ना मेटै कोय, साध मिलै साधु जन है, संतोख वसै गुर पाए, अकथ कथा विचारी है, जे सतगुर माहे समाए, पी अमृत संतोखिया, दरगह पैदा जाए, घट घट बाजे किंगुरी, अंदन शब्द सुभाए, बिरले को सोजी पई, गुरमुख मन समझाए, नानक नाम ना विसरै, छूटै शब्द कमाए, श्री राग
1: अंदन शब्द सुभाए। ये जड़ा सुभाए शब्द आया, जे पब्बा अखर पहला लग्या होवे फिर इहदी आवाज पूरी भरमी उच्चारण कीती जांदी। हुण बाद विच आउंदा सुभाए शब्द, सुभाव सुभाए सी, बेअंत वारी इह शब्द आवेगा। ते जदों विचाले इह पब्बा अखर आउंदा इहदी आवाज थोड़ी जी घट जांदी आ, बब्बा भी नहीं बोलना, शब्द सुभाए सुभाए शब्द उच्चारण करना।
2: हुण आपां 5 मिनट की ब्रेक कर लैणी आ जी, जिथे आप जी बैठे हो इत्थे आप जी ने पोथियां बंद करके ते उपरले पासे जिहड़ा चिट्टा तौलिया थले विछिया होया है इहदा ही लड़ा आप जी ने उपर मोड़ के इत्थे खड़े हो जाणा है। जे किसी नूं कोई जल छकण दी जां बाहर वाशरूम कोई किरिया करन दी जरूरत है, आप जी हुण जा सकदे हो, 5 मिनट तुहाडे कोल है ने। ठीक, फिर आपां 45 ते संथिया अगे प्रारंभ करांगे। 5 मिनट दी हुण ब्रेक है, आप जी रिलैक्स हो सकदे हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ

अपार बख्शिश कीती है। चार पहर दिन आप जी दे भाणे अंदर सुखां दा बतीत होया है। कोटान कोट शुक्र है, चार पहर रहण आई है।

जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह।

0: मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन धन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरा तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई बहुत जन्म भरमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सोरठ महला पंजवा गुरका शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख बधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी अंध करे तेरे दासा जब पूर्ण होई आसा बलावल महला पंजवा ताती बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औख दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सब व्याध मिटाई कौ नान

हे गरीब नवाज दातार सतगुरु जी आप जी ने अपार बख्शिश कीती है दीवान दी संपूर्णता उपरंत पावन श्री मुख वाक बख्शिश कीता है सतगुरु जी आप जी दे सरूप दी टहल सेवा हुई सोहिला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया बाणी पढ़दियां सेवा करदियां आप जी दी हजूरी विच विचरदियां होइयां बेअंत प्रकार दियां भुलां दी मुआफी बख्शनी अगे तो सुमत बख्शिश करनी सेवादार संगत हाजर है आप जी अपने सुंदर आसना उपर विराजमान होके आराम फुरमाओ सेवका नू खुशियां बख्शो अमृत वेले दे जागने नाम दान इशनान दृढ़ करवाउणा सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हुक्मी आवह जाहु। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनया मन्या मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन से रुति माहो कवन, जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जानै, रुत माहो ना कोई। जा करता सिर ठिकाओ साजे, आपे जानै सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना। नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै नानक। जे को आपाओ जानै, अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक बात। सहस अठार है कहन कतिबा, असलू एक तात। लेखा होए ता

जाहे। एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगहै जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खप तुटह वेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख साध मार। एह भेदात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाएक आखन पाए। ओह जाने जेतिया मुहे खाए, आपे जाने आपे दे। आख है से पे केई के, जिसनो बक्से सिफत सालाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आव है अमुल लै जाहे। अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबान। अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान। अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लिव लाए, आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े करह वख्यान, आख है ब्रह्म आख है इंद। आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईसर आख है सिद्ध। आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव। आख है सुर नर मुन जान सेव। केते आख है आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करेहे, ता आख ना सकहै केई के। जेवड भावै तेवड होए, नानक जानै साचा सोए। जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखियै सिर गावारा गावार। सो दार केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे। केते राग परिस्यो कहियन, केते गावन हारे। गावहै तुहनो पावन पानी बै संतर, गावहै राजा धर्म दुवारे। गावहै चित गुपत लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। गावहै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावहै इंद इदासन बैठे, देवत्या दार नाले। गावहै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सति संतोखी, गावहै वीर करारे। गावन पंडित पढ़ नर खीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावहै मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच्छ पयाले। गावन रतन उपाए, तेरे अठ सठ तीर्थ नाले। गावहै जोध महाबल सूरा, गावहै खानी चारे। गावहै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। सेई तुद नो गावहै जो तुद, भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर, जिन से माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साह पात साहिब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत, झोली ध्यान की करहै बिभूत। खिंथा काल कुवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहत। जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारन। घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की। रिद्ध सिद्ध अवरा साध,
संयोग वेयोग द्वयकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश तिसह आदेश आदि अनिल अनादि अनाहते जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाई दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहते जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एकावार कर कर वेखै सिर जनहार।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਪੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ ਅਸੂਝ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕ੍ਰਮ ਹੈ ਅਭ੍ਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ
अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे को कर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जिह वेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जा कर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह है के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रचयो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वहु चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भर नाडै अन दंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्तरै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक बरनै के सर्बा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्तरंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रिहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनेंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्बंग कली हैं के सर्बंग दली है के सर्बतर माने आए के सर्बतर दाने आए के सर्बतर गौना है के सर्बतर भावना है के सर्बतर देसा है के सर्बतर पेसा है के सर्बतर राजा है के सर्बतर साजा है के सर्बतर दीना है के सर्बतर लीना है
के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भान्याय के सर्वतर मान्याय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फिहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीन है अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाद स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूपय अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं के नरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छांद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अपूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अपगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाद विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासुल फिकन हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं
समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं बेहस्तुल निवास हैं के सर्बुल गवान हैं हमेशुल रवान हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जाल थल अमंड दिस विस अपंड जाल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण हैं सर्ब उबारण हैं त्रित के तरण हैं जग के करण हैं मन मान्या हैं जग जान्या हैं सर्वं भर हैं सर्वं कर हैं सर्ब पास्या हैं सर्ब नास्या हैं करुणाकर हैं बेस्वं भर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खल खंडस हैं पर ते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणा कृत हैं अकृता कृत हैं धरणी त्रित हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अजबा कृत हैं अमृता मृत हैं नर नायक हैं खल कायक हैं बेस्वंग पर हैं करुणालय हैं निरपनायक हैं सर्वपायक हैं भव भंजन हैं अर गंजन हैं रिप तापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्म हैं सर्व आत्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद्ध जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेपुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे
निरकामं बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं परणासी स्वधर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरं परणासी करीमोल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमोल रहीमे चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साही दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो कार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को उना देखी अत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत काओ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार हसार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सोएक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख पवान जपैंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करैंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरैंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परैंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो
कौ भूतान को पूजत है पास, कौ मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। कौ भूतान को पूजत है पास, कौ मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है पात साही दसवी। कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस तुझ जो करिया हो रक्षा, राख लिहो मोह राखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को साव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंभ, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जा को भेव न पावत बेदा। ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप आपु

तुम करो सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रान काता। जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित तो हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हारे हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छै करता। श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो या की एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई। संबत सतरह सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै

अगन मह आहार पहुचावै, ओसनो केहो पोहे ना सकी, जिस नाओ अपनी लिव लावै, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिया। कहे नानक ए वडदाता, सो क्यों मनहु विसारिया, जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही, करता खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनों सिर सौ पिया, विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जिया हो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे भाणा। कहे नानक हर रास मेरी, मन हुआ वन जारा। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए, हूरत कितै जिचर, हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पलै पिया, हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापए, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जुग। ए शरीरा मेरिया, इस जग मह आए, कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्ब लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सत गुर मिलै दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुनै नो पठाए, साचै सुनै नो पठाए, शरीर लाए। सुनहो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समाणी। सच अलख विडानी, ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वहो, साचै सुनै नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुर

अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला, साचा घर गावहो, गावहो ता सोहेला घर साचा, जिथै सदा सच त्यावहे। सचो त्यावह जा तुद भावह, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्से सो जान पावहे। कह नानक सच सोहेला, सचै घर गावहे। अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दे आ गए।

कद पसी जानी तो हे सो कहो टल गोर सेविया अहनेस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए।

सत्संग जी अंतर्गत होके नाम नूं सुनना करना जियो, नाम चक्कर ते सुन सकते हो। हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन उथे सुन सकते हो। कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आउंदी है उथे सुन सकते हो। जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे है उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो। जिन्हां गुरमुखां नूं अजे नाम अंदरों प्रगट जां नहीं सुन रहा उन्हां ने श्वासां नाल अंतर्गत होके नाम नूं सुनना करना जियो। श्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना, श्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना। इस तरह आपां सास ग्रास स्मरण करना जियो। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लैके जाना जियो। कृपा करके नेत्र बंद रखने आ। दो मिनट मगरों आपां फिर रसना नाल जपना करांगे जियो।

पौड़ी अपने आप साजे अपने छोना देख दर साजे क्रास निठो चाओ दात करताप तूच से विक्रेप सावो तू जाने सब सिद्रह से जिनकवावो क्रास निठो चाओ क्रास निठो

चल मूरत अनभाव प्रकाश अमतोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि सोहान गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बांतरण कहत त्व सर्व नाम कथा कवन

सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चारण लागे। सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चारण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जान। मेरा अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए घर नाओ निध आवै ताए। सब थाई होई सहाए दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई होई सहाए दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही। देख के अन डिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुवासां नाल निबाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतहै बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है। आप जी दी महान कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर सुंदर दीवान सजे सजे होए दीवाना अंदर। वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप आसा जी दी वार दे कीर्तन लड़ी वार शब्द दी विचार छे पौड़ियां श्री आनंद साहिब जी दे पाठ होए। अगाध बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों समुचियां सेवावां निभाउंदियां तो होईयां बेअंत भुलां आप जी ने बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा। दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी। सब नू अपने दरों घरों नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना। संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां अंदर सुख शांति वरतौनी।
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਭੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਪਰੰਤ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो तुद डिठे सचे पाते साह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पाते साह सिर साहां दे

राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप है आठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही, पंच रागनी संग उचरही। प्रथम पैरवी बलावली, पुन्याकी गा वह बंगली। पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पाचो नारी। पंचम हरखद साख सुनाव है, बंगालम मद माधव गाव है। ललित बलावल गावही अपनी अपनी पांत, अष्ट पुत्र पैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक आलाप है, संग रागनी पाचो थाप है। गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी होती उचारी। तनासरी ए पाचो गाई, माल राग कौशक संग लाई। मारो मस्त अंग मेवारा, प्रबल चंड कौशक ओबारा। खौखट औपौ रानद गाए, अष्ट माल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल, पंच नार संग अष्ट सुत। उठहै तान कलोल, गायन तार मिला वही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सहाई। सरस अहीरी लै पार जा, संग लाई पांचो आर जा। सुरमा नंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरस बान ओ आहे बिनोदा, गावह सरस बसंत कमोदा।

थापि सालु सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गावह पंचो संग बरंगन लावह सोरठ गोंड मलारी तुनि पुन गावह आसा गुनगुनी ऊचे सुरसु हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पंचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट औ जलता।

तेरा सब कुछ है जिस दे हिस्सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साज नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया।

कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पजाइया, सदा कुरबान की ता गुरु विट हो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुन हो संत हो, शब्द तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच सबत कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ।

साहिब हर जुग जुग भगते उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देव मुखलाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख तामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला पार पूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिनकी तीसो पार पया कहो ना निकर ते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परी स्यो कहिया है केते तेरे गावन हारे गावन तदनो पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीचारे गावन तदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देव त्या दर नाले गावन तदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तदनो साध बीचारे गावन तदनो जति सती संतोखी गावन तदनो वीर करारे गावन तदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मछ पयाले गावन तदनो रत्न उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तदनो जोध महाबल सूरा गावन तदनो खाणी चारे गावन तदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बीचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन्यो पाई कर कर देख कीता अपना ज्योतिष दी वडियाई ज्योतिष पावै सोई कर सी फिर हुक्म न कर ना जाई सो पात साहो सहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोय केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रह समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोय न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहने न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद विण सिद्धि कनै ना पाईया कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या वेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ।

खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन केवड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास तन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत्यो पाए ताका रिजक आग्य कर तरया मेरे माँ दाओ जी सतसंगत मिले सो तरया गुर पर साध परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी तरया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया उडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिर जिनहारा सब जियत मारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बे अंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो से वह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पै जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जिन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमित शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थी सी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब नीति आया जिसनो कृपा करह ते नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माँ है तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर वरड़े पेले नवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिस्रित तेरे गुण गलिया रहाओ नाहो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰਨ ਜਾਮ ਲਾਗ ਪਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਓ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜ

नाए तेरा छड़ जाहे, पौजल बिखमस गाहो, गुर सबदी पार पाहे, जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मह एहो पुन गुन गोविंद गाहे, सबसे नो कृपाल संभाले साहे सा।

जी बोलो जी, पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी, बोलो जी, प्रथमे

गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हारे हारे तिनके होमै रोग गए रहाओ। ब्रह्मा बिसन महादेव त्रै गुण रोगी विच होमै कार कमाई।

तिनको जन्म मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने,

जेने सिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो, नानक आपे वेख हर बिगसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।